0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
7: Ladies and gentlemen.

ये कोई बहाने की जरूरत नहीं। डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ, यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता है। म्यूजिक ऑटोमेटिक, शॉट बस्टर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं थैंक्स टू रिची। लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
6: क्लब मिर्ची।

Hi, darling. I want to dance with you. Dance. Dance of love.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
6: अब मिर्ची खा।
8: Radio Mirchi, it's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
8: on a ride.
10: Club Mirchi,

0: साथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो।
1: You are vibing with Oyontika and DJ Richard on Club Mirchi. Club

थोड़ी सी स्वेटी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे. क्लब मिर्ची जा रही है, दीजिए रिचर्डन मिर्ची और यों देगा. We are officially past the point of pretending this is a calm evening. It's not. And after all that, we are going straight for the adrenaline because apparently relaxation was never the plan.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: Cheap.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
3: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

डर मिर्ची और यौन दिखा. वेलकम बैक पीपल. सम पीपल से डोंट फॉल इन लव, आई से डोंट फॉल अस्लीप, नॉट व्हेन द प्लेलिस्ट इज दिस गुड. इश्क कभी करियो ना बेबी, हियर वी गो.

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड मिर्ची और यौम तक आपके साथ। वीकेंड सनी हो या रेनी, पार्टी मूड सनी तो होना ही है, तो लेट्स या सनी सनी टुगेदर।

म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम्तिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोनिका.

큐인가? 클럽 매치 only on 매치 We'll be right back after these messages.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

कोई बहाने की जरूरत नहीं। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता है। म्यूजिक ऑटोमेटिक, शॉट बस्टर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं थैंक्स टू रिची। लेट्स गो।

जय जय शिव शंकर, अज मूड है भयंकर।

प्यार होता कई बार है एंड वीकेंड पार्टी में क्रश भी कई बार हो ही जाता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, बस यही तो करते हैं हम तेरे प्यार में।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल

खुशी जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. वीकेंड रूल नंबर वन, डोंट ओवरथिंक योर प्रॉब्लम्स. रूल नंबर टू, इफ यू एब्सोल्युटली मस्ट ओवरथिंक, डू इट विद कैल्विन हैरिस प्लेइंग लाउडली.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट
5: लेडीज एंड जेंटलमैन।

तेरी मेरी कहानी है ये प्लेलिस्ट क्लब मिर्ची में डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंदिका अकेले कहाँ हो यार हम है ना आपके साथ इट्स ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग व्हेन इट्स अ वीकेंड विद अस योर ऑन क्लब मिर्ची

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
3: ऑन अ राइड.
0: क्लब मिर्ची विद ऑयोंतिका एंड

कोई बहाने की जरूरत नहीं, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंते का आपके साथ यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता है। म्यूजिक ऑटोमेटिक, शॉट बस्टर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं थैंक्स टू रिची। लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

Hi, darling. I want to dance with you. Dance. Dance of love.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।
5: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
7: On a ride.
0: Club Mirchi.

0: में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो।
1: You are partying with Oyon Deka and DJ Richard on Club Mirchi. Club

से स्वेटी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे. क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे मिर्ची और मिर्ची और यों देगा. We are officially past the point of pretending this is a calm evening. It's not. And after all that, we are going straight for the adrenaline because apparently relaxation was never the plan.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

ways to deal with stress, we have a much easier one. Just turn up the music. 100 तरह के गाने मिलते हैं यहाँ पे क्लब मिर्ची बेबी.

और म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पड़ी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योम थिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोंतिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे औसत एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन टेका।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।

ओ जय जय शिव शंकर, अज मूड है भयंकर।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
2: अरे तू भी आस।
1: इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
4: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
5: इट्स हॉट। Radio Mirchi, Radio Mirchi, it's hot. 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मैं खत्म तो खेल खत्म. रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आपने बूमर आस्किंग के बारे में सुना है? आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सवाल आपसे है लेकिन तारीफ खुद की है, इसे कहते हैं बूमर आस्किंग। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, जेंजी का शब्द है बूमर आस्किंग। इसका बेसिकली मतलब होता है कि एक इंसान आता है, आपसे एक सवाल पूछता है, लेकिन आपके जवाब देने से पहले वो अपने बारे में बताने लगता है, खुद की पढ़ाई करता है या बताता, पता है तुमको क्या हुआ, और ज्यादातर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहता है। तो बहुत साल पहले ना मेरे एक बहुत कमाल के ऐसे लीडर रहे हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उन्होंने गाइड भी मुझे किया एक्सेट्रा। लेकिन जब मैं शब्द पढ़ रहा था ना, मुझे उनकी याद आई, क्योंकि वो हमेशा इंश्योर करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही रहेंगे कमरे में, चांस ही नहीं कि किसी और पे कभी स्पॉटलाइट जा सके, चाहे आपका ही स्पेशल दिन क्यों ना हो, ही वुड ऑलवेज इंश्योर दैट अटेंशन उन पे रहे। इत्तफाकन से मैं थोड़ा सिक्योर टाइप का आदमी, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, मैं हमेशा देखता है लीडर हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा एक्सेट्रा। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से मिलता था जो हमेशा मुझे आके ये बोलते थे कि यार इनका प्रॉब्लम क्या है, यार सवाल मुझसे पूछते हैं, जवाब खुद ही देते हैं, फिर इतनी कहानी बताते हैं, सारा अटेंशन इन पे रहता है, हम पे अटेंशन आने से वो इनसिक्योर हो जाते हैं, और उनको कभी फर्क नहीं पड़ता था इससे। तो जो इनसिक्योर पर्सन थोड़ा सा है, ऐसे लोगों के सामने उनको क्या बोला जाए ताकि वो तकलीफ में ना हो?
4: इनसिक्योर लोगों को आप कुछ नहीं कह सकते। इनसिक्योर व्यक्ति को नाम मान शान चाहिए होता है
3: जी,
4: और इसलिए आपने खुद ही उस चीज का जवाब दे दिया कि वो जो अटेंशन सीक कर रहा है वो इनसिक्योर है। हमें कई बार अटेंशन सीक कर रहा है उतना दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे जो बीमारी है जो हम कई बार नहीं देख पाते वो है इनसिक्योरिटी। और इनसिक्योरिटी वाला तो किसी भी हद तक जाएगा, जो सिक्योर नहीं होता ना वो फिर थोड़ा सा चलाके भी करता है, मैन्युपुलेट भी करता है, झूठ भी बोल लेता है, लेकिन उसको जो चाहिए
3: वो लेके रहता है,
4: वो लेता है। तो इसलिए हम उनको कुछ न बोल करके अपने को सिक्योर करने की मेहनत करें। हम अपने से पूछे कि हमें इतना टेंशन क्यों चाहिए। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी में तो हम इस लेवल तक भी जाते हैं कि आपने कुछ अकम्प्लिश किया। स्पिरिचुअलिटी में नहीं, ये तो हम सीखते हैं, पर ये सबके लिए है। कहते हैं त्याग का भी त्याग। त्याग का त्याग क्या होता है कि आपने कोई स्पेशलिटी या कुछ आपने अकम्प्लिश किया, फिर आपको उसका भी माना जाता है,
3: तो उसको भी त्याग करो।
4: हाँ, मतलब वो चीज आपने वहीं से ही सीखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मेरे में बहुत टॉलरेंस है,
3: ये भी एक तरह का अभिमान है।
4: अभिमान ही है ना, पहले तो वो विशेषता नहीं थी, फिर उस विशेषता को हमने धारण किया, या मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, या मेरे अंदर बहुत टॉलरेंस है, या मैं किसी को कोई बात समझाता हूँ ना तो उसको एकदम समझ में आ जाती है। स्टॉप आइडेंटिफाइंग इवन विद योर स्पेशलिटीज। जिस चीज को आप अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, कल को उसके बारे में किसी ने भी कुछ बोला आप हर्ट होंगे।
3: ऐसा नहीं है,
4: जब व्यक्ति हर्ट होता है ना तो उससे पता चल जाता है वो किस चीज से आइडेंटिफाई करता है। जहां व्यक्ति, दिस इज द बेस्ट वे, जब सामने वाला हर्ट होता है या आप हर्ट होते हैं, आपको तभी पता चल जाता है कि आप उस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं, उस चीज को आपने अपनी पहचान बना रखी है, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपका शक्ल है, चाहे वो आपके कपड़े हैं। व्हेन समबडी सेज समथिंग अबाउट दैट एंड यू गेट हर्ट, मैंने आप उससे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन वो सब कुछ हमने अक्वायर किया है, और लोगों का उसके प्रति कुछ ना कुछ ओपिनियन होना ही है।
3: सही बात।
4: यू आर सेपरेट फ्रॉम व्हाट यू अक्वायर्ड एंड यू आर सेपरेट फ्रॉम व्हाट यू डू।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: दूसरों को हंसाने वाले लोग किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजरते हैं, आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक छोटी सी किताब में पढ़ रहा था कि अभिषेक बच्चन एक बार एक शूट पे गए थे और लाइट दादा ऊपर से लाइट फिक्स कर रहे थे, और अभिषेक बच्चन जाने जाते हैं वो बहुत ह्यूमरस काइंड के हैं, तो उन्होंने लाइट दादा को देख के बोला भाई कितना भी लाइट एडजस्ट करने की कोशिश करो थोपड़ा ऐसा ही है, ठीक नहीं होगा। और फिर लोग हंसने लग गए, और मैं ये पढ़ रहा था तो मज़ा तो मुझे भी बहुत आया पढ़ के, लेकिन एक और बात में जो साथ में सोच रहा था कि कई बार कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं ना वैसा ही आप बनने लगते हैं। एक है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर कि सिचुएशन को आपने लाइट कर दी और माहौल आपने संभाल लिया और सब एकदम टेंशन वाला माहौल हट गया, और दूसरा अगर हम खुद को ही ये बोलते रहे कि हम अच्छे दिखने में नहीं है, हमारा थोपड़ा ऐसा। मैं अभिषेक बच्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली इसको एग्जांपल लेके आगे बढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को में विश्वास करने लगते हैं कि हम ऐसे ही हैं। तो इसका लिमिट कहाँ रखें कि एक है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर और दूसरा है कि हमेशा हम अपने बारे में ऐसा ही सोचें।
4: वो तो पता चल जाता ना, एक होता है सेल्फ क्रिटिसिज्म।
3: हाँ,
4: तो जो आप उनकी बात कर रहे हैं वो कोई क्रिटिकल नेचर नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि कई बार आप सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहते हैं।
3: सही बात है।
4: आप कोई लाइट ऐसी लाइन बोल देते हैं, इट्स ऑलवेज बेटर कि वो ह्यूमर अपने ऊपर हो किसी और के ऊपर होने से।
3: वो
4: सिक्योर व्यक्ति कर सकता है।
3: बिल्कुल।
4: कोई व्यक्ति जो बहुत बहुत सिक्योर है वो ही उस चीज को अपने ऊपर लेकर के उस चीज को थोड़ा सा लाइट कर देता है, पर क्रिटिकल नेचर में आप कभी ये कर नहीं सकते। उसमें आप अंदर मन में ही करते रहते हैं, आप बाहर नहीं बोलते हैं। आप मन में ही कहते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। दैट इज द इनर कॉन्वर्सेशन, और वो एक लाइन नहीं होती है। यहाँ पर तो एक लाइन होगी सब हंसेंगे खत्म
3: हो जाएगी,
4: लेकिन वो एक लाइन नहीं होती,
3: वो चलती रहती है।
4: वो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होती है, तभी तो वो आपको इतना अंदर से खाली कर देती है। वो आपकी शक्ति को बिल्कुल खत्म कर देती है, क्योंकि वो आपके जैसे बैकग्राउंड में चल ही रहा है। इसलिए फिर एफर्मेशन की प्रैक्टिस कराते हैं। उसका उल्टा क्या है,
3: पॉजिटिव चीजों पे आप ध्यान दें
4: कि आपका जो बैकग्राउंड के अंदर कॉन्वर्सेशन है
3: वो
4: नेगेटिव से पॉजिटिव हो। तो अगर आपको ये चल रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो एफर्मेशन होगा आई कैन डू एवरीथिंग। फिर अगर आपका अंदर में ये चल रहा है आई एम नॉट गुड इनफ, तो फिर एफर्मेशन होगा आई कैन अचीव एनीथिंग, आई एम सक्सेसफुल, आई एम काम। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर इफ यू क्रिटिकल अबाउट समथिंग और वो बहुत डोमिनेंट थॉट है, तो उसका उल्टा वाला थॉट प्रैक्टिस करना शुरू करो।
3: बहुत अच्छी बात कही आपने।
4: तो वो पहले आप बोलेंगे आपका मन सुनेगा, फिर आपका मन सुनेगा वो धीरे धीरे कर्म में आएगा, फिर धीरे धीरे वो संस्कार बनेगा। बार बार वो कर्म होगा तो संस्कार बनेगा। एक बार वो संस्कार बन गया ना, आपको फिर अफर्म करने की या रीअफर्म करने की जरूरत नहीं होती है।
3: बहुत बढ़िया।
4: एफर्मेशन इज बिल्कुल जब अंदर नेगेटिव ही है तो उसको कट करने के लिए फिर वो एफर्मेशन की प्रैक्टिस मदद करती है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, नागेश का एक सवाल आया है कि खुद पर डाउट और दूसरों से कंपैरिजन की आदत कैसे छोड़े।
3: कोई भी आदत है, पहला स्टेप तो रियलाइजेशन ही है जो उन्होंने कर लिया है। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। तीन स्टेप होते हैं, रियलाइजेशन, डिटर्मिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन।
2: रियलाइजेशन, डिटर्मिनेशन और फिर ट्रांसफॉर्मेशन।
3: तो अब रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन 1-1% ही है।
2: अच्छा।
3: मतलब उसमें रियलाइजेशन भी आपको कुछ आपने सुना, रिफ्लेक्ट किया, आपको हो गया। मेजर चंक जो होता है, 98 स्टेप्स जो होते हैं, वो है डिटर्मिंड होकर के उस संस्कार को चेंज करना।
2: क्या बात।
3: तो वो कोई सुनने से या पढ़ने से नहीं होता, वो प्रैक्टिस से होता है। तो अगर वो इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे कि फिर से किसी से कंपेयर कर रहे हैं और अपने मन को बोलेंगे नहीं, हर एक यूनिक है, हर एक की अपनी रेस है, हर एक का अपना जीवन जीने का तरीका है, मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना है। एंड दिस इज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ना।
2: वेरी नाइस।
3: जैसे किसी ने मुझे बताया था, उन्होंने अपनी टेबल के ऊपर लिख कर रखा था कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और ना कोई छीन पाया है।
2: मैंने भी अपने टेबल पे तो नहीं, मन में शायर लुधियानवी की लाइन लिख के रखी है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया और जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया।
3: तो ऐसे आपको अच्छी अच्छी बातें आप कहीं लिख करके रखें, वो रिमाइंडर का काम करेंगे। वो रिमाइंडर आपके मन की सोच को ट्रांसफॉर्म करेगी। जो पहले थॉट चल रहे हैं ना, कंपैरिजन के थॉट क्या होते हैं, उसको मिला मुझे नहीं मिला, मेरे को मिलना चाहिए था, मेरा क्रेडिट उसको चला गया, तो वो थॉट प्रोसेस चेंज होगा। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएंगे, फिर वो कहाँ चला जाता है संस्कार पता नहीं। पर आप ये मान करके चलें कि हम किसी भी संस्कार को बदल सकते हैं। लेकिन एक होता है साधारण संकल्प, दूसरा होता है दृढ़ संकल्प। ऑर्डिनरी थॉट होता है हाँ मुझे इसको चेंज करना है। डिटर्मिंड थॉट होता है चाहे कुछ भी हो जाए
2: मैं तो चेंज करूंगा,
3: चाहे मुझे इसके लिए कितना भी टॉलरेट करना पड़े, कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी झुकना पड़े, मुझे इस चीज को बदलना ही है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिली।
2: सिस्टर, एक लगता है बच्चे का सवाल आया है। लिखते हैं कि एग्जाम सिर्फ कुछ हफ्ते दूर हैं, पढ़ाई शुरू नहीं हुई और एंग्जाइटी बढ़ रही है, अब क्या करूं?
3: अगर कुछ हफ्ते दूर है और सारा साल नहीं पढ़ा है तो वो एंजाइटी उस कारण से भी होती है।
2: हाँ।
3: लेकिन अभी एंजाइटी करने से तो कोई फायदा नहीं है।
2: सही बात।
3: क्योंकि जितना समय है वो भी वेस्ट हो जाएगा। जो समय निकल गया है उसको हम वापस ला नहीं सकते। गिल्ट में जाने से, रिपेंट करने से कोई फायदा नहीं है। अब जितना भी समय है अपना बेस्ट दें, हार्डवर्क करें। एंजाइटी हम क्रिएट कर रहे हैं, एग्जाम नहीं क्रिएट कर रहा है। एंजाइटी किस चीज की, क्या होगा, एग्जाम इतने नजदीक है, पढ़ा नहीं है, पास होऊंगा नहीं पास होऊंगा, ये एंजाइटी है। आपका
2: मन के बारे में एक्चुअली सोच के एंजाइटी होती है,
3: रिजल्ट के बारे में,
2: फेल होंगे पास होंगे,
3: लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे। अब वो सारे थॉट सोच के कोई फायदा नहीं है ना, वो आपको डिप्लीट कर रहे हैं। तो आप अपने मन को कहे ठीक है, जो हो गया हो गया, अभी मेरे पास ये 2 हफ्ते 4 हफ्ते हैं, आई विल गिव इन माय बेस्ट। जितना मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी ताकत है, मैं उससे भी ज्यादा, एंड देन वी विल सी व्हाट विल हैपन। आप हार्ड वर्क करेंगे जरूर रिजल्ट निकलेगा।
2: और अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि धोनी ये कहते हैं कि प्रोसेस पे ध्यान दो। अगर प्रोसेस पे आपने ध्यान दिया, उस पर पूरी अपनी शिद्दत से मेहनत की, तो रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि उस पर वैसे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं,
3: कोई कंट्रोल नहीं है। और लेटली मुझे अभी एक बहन मिली एंड शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंस, वेरी सिंपल एक्सपीरियंस, बट उन्होंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप किया है अभी।
2: अच्छा।
3: तो वो कह रही थी मैं हमेशा से ही एकेडमिकली बहुत अच्छी रही हूँ, लेकिन अब मेरी परफॉर्मेंस 5-7% और बढ़ गई है।
2: अच्छा।
3: मना अगर मेरे 93 आते थे तो अभी 99 आने लगे हैं, बढ़ गई है। ऐसे क्या चेंज हुआ? कहते कि मैं हमेशा से ही एकेडमिकली बहुत अच्छी थी, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग थी, पर एंजाइटी क्रिएट करती थी। और वो जो मेरी एंजाइटी थी वो मेरी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को थोड़ा सा कम कर रही थी, क्योंकि मन अगर व्यर्थ सोचेगा तो उतना तो फोकस नहीं हो सकता ना। कहते जैसे ही मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू किया मन के ऊपर, अफर्मेशंस प्रैक्टिस करे, मेडिटेशन प्रैक्टिस करी, अब वो 5-6% बढ़ गया है।
2: क्या बात।
3: तो एंजाइटी हमारी कैपेसिटी को और कम कर देती है, और एंजाइटी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। तो कम से कम जितना समय है उसमें अपना बेस्ट दें, अपनी शक्ति को ऐसे नष्ट न होने दें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, पवन महरिया का सवाल आया कि जिस दोस्त को मैंने बिना सोचे समझे हेल्प किया वही पैसे लौटा ना रहा हो तो क्या करें, क्योंकि कर्म तो मेरे अच्छे थे फिर भी मैं हर्ट क्यों हूँ।
3: कर्म आपके अच्छे थे, आप उसले हर्ट नहीं है, लेकिन कर्म करने के बाद जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी वो हर्ट क्रिएट कर रही है। तो आपने अच्छा कर्म किया और फिर आपने सोचा कि वो भी अच्छा कर्म करेंगे, वो चीज की एक्सपेक्टेशन है।
2: लेकिन ये तो नॉर्मल है ना, उसको जरूरत थी, मैंने पैसे दिया, वो पैसे उसको लौटाने चाहिए।
3: नॉर्मल तो है, राइट करना तो नॉर्मल ही है ना, लेकिन फिर भी नॉर्मल आज हो नहीं रहा ना। किसी की नियत बदल जाती है, किसी की भावना बदल जाती है, तो कोई बात नहीं, आपको अंदर में विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो किया कर्म राइट था। तो यहाँ से नहीं तो कहीं से उसका कॉन्सिक्वेंट लौट करके आएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका दोस्त जो कर रहा है वो राइट है। नहीं, वो जो दोस्त कर रहा है वो गलत है। अगली बार जब आप किसी को पैसे दें तो आप सोच समझ करके दें, ये वापस आ भी सकते हैं
2: या नहीं भी आ सकते,
3: ये नहीं भी आ सकते हैं। इसलिए कभी कभी देते हैं, अब ये कितना हर एक को पॉसिबल है, उसको सहयोग के रूप में दे दो और या तो नहीं दो। क्योंकि अगर आप लोन के रूप में दे रहे हैं किसी को, वो आएगा कि नहीं आएगा उसकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता ना। फिर भी आप ट्रस्ट ही करेंगे, अच्छा काम ही करेंगे, हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं आपको कहूंगी कि आप अगली बार हेल्प ही ना करें किसी को। एक इंसिडेंट से इतने हर्ट हो जाएं कि आप अपना हेल्प करने का संस्कार ही छोड़ दें, वो भी तो कोई अच्छी बात नहीं है।
2: सही बात।
3: तो अगली बार आप और केयरफुल हों और वेरीफाई करें, या दे करके इतनी ताकत रखें कि आ गया तो भी ठीक है, नहीं तो चलो ये सहयोग, वैसे भी तो कोई दान करते हैं, ये मैंने सहयोग दे दिया। क्योंकि सामने वाला कैसे व्यवहार करेगा उस पर बहुत कंट्रोल नहीं है, हमारा दोस्त है वो। अनजान व्यक्ति होता तो क्या ही करते, हमारा दोस्त है तो आपकी भी शायद परख उतनी नहीं थी। परख शक्ति भी एक शक्ति होती है कि परख लेना कि जिसको हम सहयोग दे रहे हैं वो लौटाएंगा भी कि नहीं। सो इट इज ओके, आई थिंक ये लाइफ में एक लेसन है। बिटर नहीं हो, हर्ट नहीं हो, बाउंड्री सेट कर लें, दोबारा नहीं दें उसको, लेकिन उसके प्रति भी अच्छी भावना रखें और अपने मन को दुखी नहीं करें, और मदद करने का संस्कार बिल्कुल नहीं छोड़ें। ये संस्कार बहुत दुआएं दिलाता है। एक जगह से भले आपको नेगेटिव रिस्पांस मिला, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये संस्कार गलत है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
2: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
1: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
6: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
5: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
6: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
5: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
9: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मुझे बार बार धोखा क्यों मिलता है, आइए इस सवाल को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर मेरे बहुत ही करीबी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके साथ क्या है कि वो कई बार धोखा खाएं जिंदगी में, और ज्यादातर वो ऐसे लोगों से धोखा खाएं जो बहुत पहुंचे हुए लोग थे, वेल एडुकेटेड, वेरी चार्मिंग, और वो अपने चार्म में इनको फंसा लेते थे। और ये बहुत अच्छे इंसान हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, और उनकी जो बीवी हैं वो उनको हमेशा कहती थी कि आपको लोग कोई भी बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, और ये कहते देखो मैं एक बहुत ही गिविंग सोल हूँ, मुझे पता नहीं चलता। लेकिन दिक्कत कब हुई, जब उनको एक ही इंसान कई बार बेवकूफ़ बना के चला गया, तो उनकी वाइफ बोलती है भाई आपको एक बार आपने लेसन सीख लिया फिर तो मत दो। तो मुझे याद है एक बार मैं उनके साथ बैठा था, मैंने कहा ऐसा कैसे होता, बोलते वो बात ऐसी करती है, वो ऐसा मुझे बोल जाता था, मुझे लगता था इसको बहुत ज़रूरत है, पिछली बार के लिए वो माफ़ी मांग रहा है कि भाई सिचुएशन ऐसे है, तो मैं क्या करता, मुझे देना पड़ा उसको पैसे। तीसरी बार जब हुआ तब क्या हुआ, मतलब फिर उसने ऐसी कोई सिचुएशन बना दी कि मेरे हाथ से निकल गया। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इंसान अच्छा हो सच्चा हो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंस ऐसी बन जाती है। स्कैमस्टर्स में भी ये पावर होती है कि आपको वो कन्विंस कर देते हैं कि उनको बहुत जरूरत है। ऐसे केस में इस इंसान जो को क्या बोले जो बार बार धोखा खा रहा है।
4: नहीं, बार बार अगर आपको धोखा मिल रहा है तो इसमें आपकी परख और निर्णय शक्ति दोनों कम है। हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन कोई आपको ग्रांटेड ले ले, फायदा उठा ले, आपका नुकसान करे, और एक बार किया तो हो सकता है आपने उससे कुछ लर्न करना था, आपके लिए वो लेसन था, पर अगर वो बार बार हो रहा है तो वो आपके भी अंदर कोई कमी हो सकती है। और वो ये भी हो सकती है कि शायद कोई बहुत प्यार से आपसे बात करता है तो आप ब्लाइंडली उसको ट्रस्ट कर लेते हैं, आप चेक भी नहीं करते, उनका बैकग्राउंड भी चेक नहीं करते, आप चार लोगों से बात भी नहीं करते, तो वो चीज़ राइट नहीं है। गिविंग होना अलग है, काइंड होना अलग है, लेकिन इस प्रकार से कोई आपको एक्सप्लॉइट करे वो राइट नहीं है। अगर वो बार बार हो रहा है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि लोग ऐसा बार बार आपके साथ कर लेते हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो किसी और को साथ में ले लें
3: जो शायद कर पाए।
4: हाँ, जो शायद आपकी वाइफ है या पार्टनर है जिसकी परख शक्ति अच्छी है, आपसे नहीं हो रहा है, आप उनकी हेल्प ले लें। अगली बार वो मीटिंग उनके साथ रखें और उनको कहें मुझे तो नहीं पता चलता है, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करो इसमें क्या करना
3: है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन।
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
10: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
14: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
13: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
14: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
13: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रहना आपके लिए बहुत चीजें आसान कर देता है, कैसे जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी सिस्टर, वो जब मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ वो इस तरह से इसलिए बिहेव करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तो दे आर नॉट लोनली, उनको है कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, मैंने अपनी जिंदगी जी ली अच्छे हैं, मैं अपने आप में रहना चाहता हूँ, मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी है। तो द कॉन्वर्सेशन इज नॉट नेसेसरली अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, या मैं शायद नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, तो ऐसे केस में उनको क्या बोला जाए।
4: सी, ये हमारी एक नेचर है कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हम फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली इंडिपेंडेंट होना पसंद करते हैं। हम थोड़ा समय भी बीमार हो, हमें डिपेंडेंट होना नहीं अच्छा लगता कि कोई दो जने मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारी नेचर नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आई हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी किसी किसी समय पर सपोर्ट लेना पड़ता है और सपोर्ट देना भी पड़ता है, एंड दैट इज ओके। पर ये नेचुरल नेचर इंडिपेंडेंट होने की है, इसलिए हमें कई बार लगता है कि हम किसी के ऊपर बोझ की तरह हैं। पर फिर भी मुझे लगता है, देखो, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, मैच्योर हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं, तो आप जल्दी से किसी पर बोझ नहीं बनते। जैसे बुजुर्ग अवस्था में कई बार क्या होगा, फिजिकली आप कई बार किसी पर बोझ बन जाते हैं, आप चाहते नहीं हैं, आप एज कर रहे हैं, आप उतना कंफर्टेबली अकेले नहीं चल पाते हैं, आपको छोटे छोटे कामों में भी किसी का सपोर्ट लग सकता है, इट इज ओके, उसमें आपके पास बहुत चॉइस नहीं है। लेकिन इमोशनली अगर आप इरिटेबल हैं, गुस्सा करते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, वो आप ज्यादा बोझ बन रहे हैं दूसरे लोगों पर। केयर गिवर और केयर टेकर को सबसे अच्छा लगता है कि जिसकी वो केयर कर रहा है ना,
3: वो मस्त रहे। बिल्कुल, बहुत खुश,
4: अगर वो खुश है, मस्त है, हल्का है, कोई ऐसी बात कर देता है जो उनका भी दिन बन जाता है, तो एक्चुअली आप भले फिजिकल सपोर्ट ले रहे हैं लेकिन आप इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं।
3: वाह, क्या बात।
4: इमोशनली इंडिपेंडेंट हमेशा रहना जरूरी है, वो आपके हाथ में है, फिजिकली हमेशा आपके हाथ में नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: दिस फेस्टिव सीजन कलॉल ऑफ न्यू जर्सी प्रेजेंट्स टू मेस्मराइजिंग नाइट्स।
0: अक्टूबर 17th, द वॉइस बिहाइंड द फेमस बिल्लो रानी रिचा शर्मा।
1: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalol.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
2: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
6: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
5: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
6: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
5: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
7: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: किसी से सपोर्ट लेना किसी पर बोझ बनना नहीं होता, कई बार ये इमोशनली सपोर्ट करती है आपको। आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: नील साइमन का एक प्ले है द सनशाइन बॉयज, वो दो बुजुर्ग कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में जो अब रिटायर हो चुके हैं या बहुत सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते। उसमें एक सीन है जहां उनमें से जो एक कॉमेडियन है वो बीमार है और एक केयर टेकर उसके पास है, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्योंकि बहुत अच्छा है तो केयर टेकर बहुत परेशान करते हैं, और केयर टेकर कहते हैं तुम्हारी परेशानी इसलिए ले लेती हूँ तुम ये जो करते हो क्योंकि तुम बहुत ह्यूमरस बंदे हो, तो आई डोंट माइंड डूइंग ऑल ऑफ दिस जो तुम नाटक करते हो। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि फिजिकली चाहे आप वीक हो, अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, तो शायद आपकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी।
4: एम्स हॉस्पिटल के एक नर्स कुछ समय पहले मिले थे और वो सुना रहे थे कि वो उस वार्ड में थे जहाँ पर ज्यादातर वो लोग आते थे जिन पैरालिसिस हो जाता है। तो कहा एक दिन ऐसे एक्सीडेंट से कोई आया और उसका चेहरे से नीचे का सारा हिस्सा पैरालाइज था, एंड शी सेड दैट वाज नॉट अनयूजुअल फॉर अस क्योंकि हम उसी वार्ड में काम करते थे कि जहाँ पर किसी का हाथ किसी का पैर, लेकिन वो सारे जो पैरालाइज्ड होते थे वो बहुत ज़्यादा उदास, हम किसी पर बोझ हैं ऐसे करके। अब ये व्यक्ति जो आया, जैसे आपने कहा, बहुत मुस्कुराता हंसमुख, और वो बार बार ये कहता था ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, खुद भी कहता था ठीक हो जाएगा, सबको भी कहता था ठीक हो जाएगा। एंड शी सेड आफ्टर 6-8 मंथ्स सारे सपोर्ट सिस्टम के साथ वो ठीक हुआ और चल करके वहाँ से निकला, और तब हम सबको रियलाइज हुआ कि अगर आपने ठान लिया
3: तो फिर तो भगवान
4: तो कुछ भी हो सकता है, मिरेकल भी हो सकता है।
3: बिल्कुल।
4: पर ठान लिया का मतलब क्या था, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत थी, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत थी, तो वो केयर गिवर्स के लिए भी आप इंस्पिरेशन बन जाते हैं।
3: क्या बात।
4: तो वो डिपेंडेंसी ना हो, बाकी सब डिपेंडेंसी कई बार हमारे बहुत हाथ में होती नहीं है।
3: क्या बात है। तो जिंदगी बेसिकली आप कह रहे हैं कि शैलेंद्र की लाइनों की तरह है जिन्होंने अनानी फिल्म में लिखा था कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार, जीना इसी का नाम।
4: एब्सोल्युटली।
3: क्या बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अच्छा करने के बाद भी बुरा मिले तो अच्छे रहें या बदल जाएं? आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बार मैं अपने पापा के साथ बैठा था, कई साल पहले की बात है, और मुझे याद है ये कॉन्वर्सेशन जहाँ पे एक इंसान बहुत धक्के खा रहा था, ठोकर खा रहा था, उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा था। वो फिलहाल मेरे पापा के पास आया और पापा ने उसकी मदद कर दी। और मुझे याद है मेरी मम्मी ने बहुत क्लियरली बोला था कि जब ये इंसान सब जगह धक्के खा रहा है, इसको कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो आप क्यों कर रहे हैं? जरूर कोई बात होगी, इसलिए इसको लोग हेल्प नहीं करना चाहते। तो पापा ने बहुत क्लियरली कहा था कि जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा ना, मेरा फर्ज है उसकी मदद करना, वरना हम इंसान ही क्यों हैं। और अंत में 3-4 महीने बाद पापा ने उसको कुछ पैसे दिए थे, उसने लौटाए नहीं और गायब हो गया वो। मम्मी ने पापा को बोला कि देखिए, मैंने पहले ही बोला था सब उसकी इसलिए नहीं मदद कर रहे हैं। तो पापा ने बोला कि मेरा फर्ज था उसको मदद करना, अब उसका कर्म है, वो चीट करे नहीं करे। एज ए पर्सन मैं चेंज नहीं करना चाहूंगा अपने आप को। अगर कल को कोई और भी आए ऐसे मदद मांगता हुआ, मैं कोशिश करूंगा उसको हेल्प करने की। पास्ट में तो जाके मैं ये बातचीत वापस दोहरा नहीं सकता, लेकिन अगर इस वक्त मैं अपने पापा मम्मी के साथ बैठा होता तो मुझे उस समय क्या बोलना चाहिए था?
4: I'll give you an example. एक बार एक टीचर ने एक बच्चे को 2 मैंगोज दिए और फिर 2 मैंगोज दिए और पूछा कितने हैं, तो उसने कहा 5।
3: अच्छा।
4: तो उसको लगा शायद इसको ठीक से काउंटिंग नहीं आती, तो उसने फिर उसको 2 एप्पल दिए और फिर 2 एप्पल दिए और पूछा कितने हैं, तो उसने कहा 4।
3: अच्छा।
4: तो उसको समझ में नहीं आया कि काउंटिंग तो ठीक आती है, तो उसने फिर उसको पूछा कि मैंने 2 एप्पल दिए, तुमने 4 बोला, मैंगोज जब मैंने तुमको 2 और 2 दिए तो तुमने 5 क्यों बोला? तो उसने कहा मेरे पास एक बैग में ऑलरेडी है जो मैं घर से लाया हूँ। सो टेक्निकली टीचर राइट थी, प्रैक्टिकली बच्चा राइट था।
3: सही बात,
4: दोनों गलत नहीं थे। टेक्निकली 2+2=4 ही होता है, पर प्रैक्टिकली वो उस एक को भी काउंट कर रहा था क्योंकि उसने पूछा तुम्हारे पास कितने हैं।
3: सही बात।
4: तो उसके पास उस समय 5 थे। ऐसे आपकी जो सिचुएशन है, ना आपके मदर गलत है ना आपके फादर गलत है, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है। एक का पर्सपेक्टिव है कि इंसानियत के नाते किसी को चांस देना हमारा फर्ज है, लेकिन उन्होंने अपने मन की तैयारी की थी कि अगर इसने चीट भी किया, इट इज ओके, आई विल नॉट गेट हर्ट, बट आई वॉन्ट टू प्ले माई रोल, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये फर्ज बनता है। ही इज राइट। और वहीं आपकी मदर अगर कह रही है कि इतने लोगों के साथ उसने ऐसा किया है, चांसेस हैं कि वो आपके साथ भी ऐसा करेगा, शी इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। बट आपके फादर ने वो मेंटल प्रिपरेशन भी कर ली थी कि अगर फिर भी उसने ऐसा किया तो वो उसका कर्म है, लेकिन मुझे मेरा कर्म और मेरा रोल प्ले करना है, इसलिए इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे एक्शंस, हमारी लर्निंग्स, हमारी अपब्रिंगिंग और हमारे पर्सपेक्टिव के अनुसार होती है, और कभी कभी दोनों अपनी जगह राइट होते हैं, इसलिए हमेशा ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम इस पॉइंट पर आए कि कौन राइट है। कभी कभी इसी को यहीं खत्म कर देना चाहिए कि ठीक है, दोनों अपने नजरिए से राइट है।
3: कॉर्पोरेट में कहते हैं ज्यादातर वो सच नहीं होता, शायद इसी को विन-विन सिचुएशन कहते हैं।
4: विन-विन सिचुएशन में ये होता है कि आर्ग्यूमेंट में कोई फायदा नहीं है, बिकॉज देन यू विल गो प्रूविंग योर पॉइंट।
3: सही बात।
4: इंस्टेड इट इज बेटर टू ट्रस्ट ईच वन्स पर्सपेक्टिव।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: आएगा।
1: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
8: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
9: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.com.

0: waiting for? Drishyam The Conclusion. In cinema 2nd October.
1: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
0: Released by Zee Studios nationwide.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
7: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
8: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेकुलर कॉन्सर्ट, अक्टूबर 10th, 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड मोंगोबाशी SCA.org। कॉन्टैक्ट 6503055624।
9: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर मीरा का एक सवाल आया है कि कभी फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छा लगता है, कभी अकेले रहना अच्छा लगता है, अपने इन दोनों साइड्स को कैसे बैलेंस करें?
3: ये तो बैलेंस्ड ही है, बहुत अच्छा है। सॉलिट्यूड है और उसमें भी कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ग्रुप है और उसके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है।
2: लेकिन दोस्तों के साथ अगर आप रह के अकेली हैं तो फिर दिक्कत है।
3: हाँ, वो प्रॉब्लम है। और अकेले रह करके के दोस्त ही याद आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। दोनों में कम्फर्टेबल होना जरूरी है। सॉलिट्यूड है मन आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, और कभी कभी ओकेजन के अनुसार अगर आप सबके साथ हैं तो आप उनके भी जो सबके साथ मना डिफरेंट पीपल मना डिफरेंसेस एंड यू कैन सेलिब्रेट द डिफरेंसेस।
2: वेरी नाइस।
3: अ लॉट ऑफ पीपल लोगों के साथ क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते।
2: सही बात।
3: उनको डिस्कम्फर्ट होता है, उनको अच्छा नहीं लगता, तो अकेला रहना पसंद करते हैं। पर एक्चुअल में जो बेस्ट है कि अकेले हैं तो भी कम्फर्टेबल हैं, लेकिन ओकेजनली अगर आप लोगों के साथ हैं, टीम के साथ हैं, तो भी आप कम्फर्टेबल हैं, वो चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती।
2: क्या बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
10: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
11: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
9: Drishyam: The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat, and many others.
12: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
9: The end we've been waiting for. Drishyam: The Conclusion in cinema 2nd October.
12: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
9: Released by Zee Studios nationwide.
13: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
14: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
13: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
14: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
2: शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।

0: चार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिली।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, जब कोई करीबी बार बार हमें ना समझे तो रिश्ता निभाएं या खुद को समझे?
3: दोनों। खुद को ये समझे कि हमने अपनी बात कह दी है, डिग्निटी से कह दी है, प्रूफ करने में नहीं जाए। बहुत ज्यादा प्रूफ करना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होता है।
2: सही बात।
3: कहना जरूरी होता है, पर बहुत ज्यादा प्रूफ करना मना आपको उनका वैलिडेशन चाहिए। जब तक वो उस चीज को स्वीकार नहीं करते आप कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। आप कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपकी जो साइड ऑफ द स्टोरी है वो आपको कह देना चाहिए। उसके बाद वो समझे या ना समझे उस पर आपका बहुत कंट्रोल नहीं है, तो उसके साथ भी पीस बना लेनी चाहिए कि हो सकता है कि समझेंगे, हो सकता है कि ना समझे। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपनी ही स्टोरी को बिलीव करना चाहते हैं। आप 100 बार भी अपनी बात कह दे पर वो अपने ही वर्जन को बिलीव करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको 100 बार भी कहने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, से इट विद डिग्निटी वंस ट्वाइस। कभी भी सिद्ध नहीं करें। सत्य को सिद्ध नहीं करना होता, सत्य को सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है।
2: क्या बात, वाह वाह।
3: बहुत ज्यादा उसको सिद्ध करने में जाते हैं ना, यू विल लूज योर सेल्फ इन दैट।
2: ब्यूटीफुल।
3: और बाकी रिश्ता तो निभाना ही है, क्योंकि रिश्ता निभाने के लिए तो आपको अपना रोल प्ले करना है ना। तो आप अपने थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन में एक्यूरेट रहें, तो आपने अपना जो कर्तव्य है, जो आपका रिश्ता है, वो परफेक्ट रहेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
6: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
7: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
6: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Type C cable के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, only on मिर्ची, it's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिली।
2: सिस्टर गिरीश का सवाल आया है, जब जिंदगी में कुछ भी अपने फेवर में ना हो तब खुद को कैसे संभालें?
3: ये वही बात है कि हम आउटकम डिपेंड कर रहे हैं कि हमारे फेवर में कुछ नहीं हो रहा है तो आप आज अच्छा करते जाएं। देखो, हमारे कंट्रोल में क्या है? बीज बोना।
2: बिल्कुल।
3: अगर कुछ भी फेवर में नहीं है, माने ये फल ठीक नहीं आ रहा, इसका ये मतलब है कि पहले कोई ठीक बीज नहीं बोया हुआ है।
2: सही बात।
3: तो अब जो ठीक नहीं हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें और फेस करें। सी, जो एनर्जी हम भेजते हैं उसको हम कहते हैं कर्म।
2: जी।
3: जो वहां से लौट रहा है,
2: हाँ,
3: बीमारी के रूप में है, अचानक जॉब छूट गई, कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, हाँ, उसको हम कहेंगे डेस्टिनी।
2: हाँ।
3: जो हम भेज रहे हैं एनर्जी विच इज गोइंग फ्रॉम मी टू द यूनिवर्स, उसको कहेंगे कर्म। जो वहां से वापस आ रहा है,
2: वो है
3: आप उसको नसीब कहें, डेस्टिनी कहें, लक कहें, कई सारे नाम है, फॉर्च्यून कहें। अब जो लौट करके आ रहा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है।
2: सही बात।
3: और हम ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं और उसके बारे में सोचने से आज बीज बोना भूल जाते हैं।
2: तो आगे भी शायद अच्छा ना हो।
3: भविष्य वर्तमान की परछाई है, इसलिए वर्तमान में अपना कर्म आप बहुत सही तरीके से करें, राइट करें, नेगेटिव नहीं हो। एक कर व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है ना, अंदर बिटर हो जाता है, उसका आज का कर्म बिगड़ने लगता है।
2: और गिरीश, आपको सिर्फ मेरे ख्याल से हरिवंश राय बच्चन की बात याद रखनी चाहिए कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर के मन से हो रहा है।
3: कितनी अच्छी बात है। तो डिवाइन प्लानिंग है, और जो आपके कंट्रोल में है वो करें, जो कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट करें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर हेमंत का सवाल आया है कि क्या एक डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन हमें सच्ची खुशी और इनर पीस तक ले जा सकती है?
3: 100%। एक बहुत सुंदर कोट मैंने पिछले दिनों पढ़ा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि जब आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं तो आपका हर दिन सेम सा लगता है, लेकिन जब आप इनडिसिप्लिन्ड होते हैं तो आपका हर साल सेम होता है।
2: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
3: तो जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो कई बार आपका वही रूटीन, उतने बजे उठना, उतने बजे सोना, उतना सब, लेकिन वो डिसिप्लिन का जो बीज है उससे आपका हर साल बदलता जाता है, आपकी तकदीर बदलती जाती है। सो बीइंग वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एक खुद को भी कंटेंटमेंट देता है कि जो मेरे कंट्रोल में है मैंने किया, चाहे वो वर्क प्लेस पर है, चाहे वो हेल्थ के लिए है, चाहे वो इनर पीस के लिए है। मैंने डिसिप्लिन्ड होकर के, सिंसेरिटी से, हार्डवर्क होकर के, जितना मेरे कंट्रोल में है वो किया। अब कल को क्या होगा वो देखा जाएगा, पर 100% आपका कल इम्प्रूव होने लगता है।
2: क्या बात,
3: इसीलिए डिसिप्लिन से फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होने लगती है।
2: मुझे भी एक कोट याद आ गया सिस्टर, ब्रूस ली ने, जो लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स के चैंपियन रहे हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि आई फियर नॉट द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, I fear the person who has practiced one kick 10,000 times. And बहुत कमाल की बात है
3: जी।
2: और आप भी वही कह रहे हैं कि अगर एक ही चीज आप बार बार करते हैं तो हो सकता है बोरिंग लगे।
3: क्योंकि देखो, टैलेंट और हार्डवर्क में एक्चुअली हार्डवर्क ज्यादा इम्पोर्टेंट,
2: प्रोबेबली द डेल्टा,
3: वो कंसिस्टेंसी आपके अंदर वो टैलेंट ले आएंगे।
2: यू नो, हाल फिलहाल में मैं एक अपनी बेटी के साथ, छोटी बेटी के साथ एक एडुकेशन फेयर में गया था, और वहाँ पे कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हैं, जो पिछले साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, तो उन्होंने कमाल की एक लेक्चर सेशन दिया था। तो उसमें एक पार्ट था, उन्होंने कहा था कि हम जो है वो स्पेस में 20 दिन ही रहे थे खाली, लेकिन उसकी तैयारी हम 5 साल से कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था 5 साल तक हम रोज एक ही रूटीन फॉलो करते थे और 5 साल बहुत बोरियत रही। हम मंडेन काम कर रहे थे 5 साल तक
3: जी।
2: लेकिन वो जब मंडेन काम हमने 5 साल तक किया तो हमको 20 दिन का एक्साइटमेंट मिला। तो जिंदगी में याद रखिए कि आपको मंडेन काम करते करते ही एक्साइटमेंट महसूस होगी,
3: और मंडेन काम को भी एंजॉय करें। डिसिप्लिन लाइफ का मतलब ये, आपका रूटीन सेम हो सकता है पर वो रूटीन बोरिंग ही हो ये जरूरी नहीं है।
2: उसको भी एंजॉय करें
3: आप, जो भी है। जैसे ये आप स्पेस की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में है, चाहे वो स्टूडेंट है कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपियर कर रहा है, जो भी हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड होगा उसके मोरलेस दिन सेम ही होते हैं।
2: हाँ, बिल्कुल।
3: उठने का समय, सोने का समय, 16 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा एक्सरसाइज करनी है, 16 घंटा स्विमिंग करनी है, ज्यादातर ऐसा होता है। पर अभी वो चॉइस आपके पास है कि आपको उसको एंजॉय करना है
2: कि हाँ, बोर होके यार,
3: कि आप उसको परेशान होकर के, थक करके करना है, तो आप उस प्रोसेस को भी एंजॉय करें। बाकी ये तो जरूर है कि डिसिप्लिन और हार्डवर्क आपकी डेस्टिनी तो चेंज करता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे। टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
8: अक्टूबर 11th अग्रानी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
9: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: 9 nights, one divine spirit.
13: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
12: Join daily Garva, October 11th to 19th at 7 p.m.
13: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th, and Sharad Purnima Garba on the 25th.
12: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
16: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुँच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर हेमंत छेड़ा का सवाल आया है कि कंपेटिटर की सक्सेस प्रतियोगिता में या प्रतियोगी की सक्सेस देखकर जेलसी नहीं मोटिवेशन कैसे फील करें।
3: अगर आप व्यक्ति को याद न रखें और ये याद रखें कि क्या चीज है जो उसको नंबर वन पर लेकर आए,
2: वो क्या चीज है जो उसमें है जो मुझ में नहीं है।
3: सीखना तो है ही ना, हमें इंस्पायर्ड तो होना ही है। कंपटीशन और इंस्पिरेशन में फर्क होता है।
2: बहुत बढ़िया।
3: कंपटीशन कंपैरिजन में थोड़ी जेलसी हो जाती है। आप व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं, इसको मिला, इसको अवार्ड मिला, सबने इसकी प्रशंसा करी, आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। पर जब आप कहते हैं कि कंपेटिटर से हम सीखें, तो आप लिटरली उसकी लाइफ को स्टडी करते हैं कि ऐसा ये क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग और शी डूइंग डिफरेंटली, जो मैं भी करूं तो मैं भी शायद उसके लेवल तक पहुंच सकूं। तो हम उसकी लाइफ को स्टडी करें, उसके स्केड्यूल को स्टडी करें, उसके स्किल को स्टडी करें, उसमें हर्जा नहीं है। पर अगर आप व्यक्ति को देखते रहेंगे तो फिर आप उस चीज जेलसी अंदर बहुत, इट्स वेरी पेनफुल फीलिंग।
2: मैंने पहले भी इनके बारे में कहा है, साइमन सिनेक जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। उन्होंने किताब लिखी है द इनफाइनाइट गेम, तो उसमें बड़ी खूबी से लिखते हैं कि राइवल और वर्दी राइवल में क्या फर्क है। तो कहते हैं कि राइवल को जिस दिन आपने एक वर्दी राइवल मानना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आप वो देखना शुरू कर देंगे जैसा कि आप कह रही थी, जो उनमें खूबी है, जिससे मुझे सीखना है। बहुत कमाल की किताब है। अगर हेमंत आप इस वक्त इस चीज से जूझ रहे हैं तो ये किताब आप शायद पढ़ सकते हैं।
3: इसीलिए हम हेल्दी कॉम्पिटिशन कहते हैं ना। हेल्दी कॉम्पिटिशन क्या होता है? कम्पिटिटर्स होते हैं, राइवल्स होते हैं, स्पोर्ट्स हैं, आप कंपेटिटर ही होंगे। आप चाहे वो एथलेटिक फील्ड में हैं, आप उधर हैं, कंपनीज भी आपस में कंपेटिटिव होती हैं, पर आप एक दूसरे को नीचे गिराने का आपका लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, आप दोनों एक रेस के अंदर हैं, लेकिन जब आप एक दोनों से सीखते हैं तो वो आपको बेटर वर्जन बनाने में सबसे ज्यादा ट्रिगर का काम करता है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर तन्मय महात्रे लिखते हैं कि लोग जज करेंगे, इस डर को कैसे हटाएं, खास करके रिच और हाईली एडुकेटेड लोगों के सामने।
3: अगर हमें इस चीज का फियर रहता है कि लोग हमें जज करेंगे, ये क्लियर निशानी है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है, तब आपको बाहर का वैलिडेशन चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है कोई आपको अक्नॉलेज करे, कोई अप्रूव करे, कोई कहे कि आप जो कर रहे हो वो बहुत सही है, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल है। किसी के लिए वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का वैलिडेशन होगा, किसी के लिए एजुकेटेड व्यक्ति का वैलिडेशन मैटर करता होगा, किसी के लिए रिच व्यक्ति का वैलिडेशन मैटर करता होगा। सामने वाले का फीडबैक लेना, उससे अपने को बेटर बनाने में कोई हर्जा नहीं है।
2: सही बात है।
3: लेकिन अपने किए पर डाउट करना, जिस क्योंकि कोई व्यक्ति आपको अप्रूव नहीं कर रहा, वो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। दोनों में फर्क है। मैंने कन्विक्शन से कुछ किया, मुझे फेथ है, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले का कोई फीडबैक है, सो आई एम नॉट सो रिजिड ऑल्सो, वो ईगो हो जाती है। आई एम ओपन टू देयर फीडबैक, और अगर मुझे लगता है कि उनके फीडबैक में कोई वैल्यू है, आई एम रेडी टू चेंज ऑल्सो, लेकिन मैं वो ही करूंगा जो आपको पसंद है।
2: वो नहीं
3: मुझे सही भी नहीं लगता, लेकिन मुझे उसमें वैलिडेशन मिलेगा तो मैं वो करूंगा। वो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है।
2: एंड तन्मय, ये बहुत जरूरी है समझना कि आप कुछ करें या ना करें, लोग तो जज करेंगे।
3: मैंने ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ भी आप करें, कुछ भी, लेकिन हर एक का कोई ना कोई ओपिनियन होगा, और वो सबका ओपिनियन आपके फेवर में हो ये नहीं हो सकता। इसलिए सबको खुश करने की, सबको प्लीज करने की ये हमारी
2: जरूरत नहीं है।
3: हाँ, ये नहीं होना चाहिए, पर्पस ही नहीं होना चाहिए।
2: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
4: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
5: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਿਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओकरी रोड, इज़िलन।
9: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
10: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
9: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
11: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
12: दिस अक्टूबर
13: विटनेस द पीक of entertainment, Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris, and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba, and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville, from 3 to 9 PM. Entry and parking is free.
14: Wow, yehi to hai mera dream lehenga.
15: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
14: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
15: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
14: इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
16: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, महेश बजाज जी लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है और अगर होता है तो क्यों होता है।
3: लव एट फर्स्ट साइट, जहाँ तक मैं समझती हूँ, कई बार हम कहते हैं ना, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया।
2: हाँ।
3: होता क्या है कि जब आप किसी को मिलते हैं और आपको लगता है यही है।
2: हाँ।
3: आप उनको पहली बार नहीं मिल रहे होते हैं।
2: अच्छा, इसमें भी कोई पुराना कनेक्शन है?
3: 100% कनेक्शन है, तभी वो एनर्जी एकदम एक्सचेंज होती है और आपको लगता है यही है। ये कई चीजों में होता है।
2: हाँ।
3: हम किसी जगह पर जाते हैं, हमें लगता है हम यहाँ पहले आए हुए,
2: पहले आ चुके हैं।
3: हम किसी से मिलते हैं, हमें लगता है हम इनसे पहले मिले हुए हैं।
2: हाँ।
3: हम मिले हुए होते हैं।
2: हाँ।
3: हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट होता है, और कार्मिक अकाउंट का मतलब बुरा ही नहीं होता।
2: हाँ।
3: कार्मिक अकाउंट किसी से हमें बहुत सुख मिलना होता है,
2: हो सकता है
3: किसी से हो सकता है कि हमारा कुछ दुख भी मिलना हो, पर वो एकदम लगता है यही है। अब कॉस्ट्यूम बदल गया पर सोल वही है, तो वो सोल के नजदीक आते ही एनर्जी एक्सचेंज होने लग जाती है, और इसीलिए हम उसकी तरफ ग्रेविटेट होने लगते हैं, और फिर हमारा जो भी कार्मिक अकाउंट है, जो भी रिश्ता है, वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है।
2: तो आशा करते हैं महेश बजाज जी, आपको इसका जवाब मिल गया। लेकिन जिस तरह से आपने लिखा है, मुझे लगता है बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है। तो अब सलमान खान की लाइफ से सीखिए। पहले उन्होंने फिल्म की थी मैंने प्यार किया, और फिर उन्होंने फिल्म की मैंने प्यार क्यों किया। तो मेरे को लगता है महेश बजाज भी उसी सिचुएशन में इस वक्त हैं।
3: एक्चुअली होता क्या है ना, इसमें कभी कभी हमें लगता है जब हम किसी की तरफ ग्रेविटेट होते हैं ना, हमें लगता है यही है।
2: हाँ।
3: तो आपको लगता है कि इससे तो मना एक अंदर में होता है कि ये परफेक्ट है।
2: हाँ।
3: पर होता उनके साथ हिसाब किताब है।
2: हाँ।
3: तो फिर कभी कभी हिसाब किताब के कारण जिस व्यक्ति से आपको बहुत प्यार होता है, उससे बहुत दुख भी मिलने लगता है, उसकी किसी हैबिट से, किसी संस्कार से। फिर आपका मन कहता है कि Why did I gravitate in this direction? मना क्यों, वो क्यों का आपको आंसर नहीं मिल रहा होता।
2: सही बात है।
3: पर एक्चुअली में जिनके साथ हिसाब किताब होता है, वो अपने बनकर आ जाते हैं। इसे कार्मिक अकाउंट सेटल करना जरूरी है। कई बार हम किनारा करते हैं, हम कहते हैं इनको छोड़ देते हैं। आप छोड़ देंगे, वो फिर किसी ऐसे रूप में आ जाएंगे कि आप छोड़ भी नहीं पाएंगे। वो बिल्कुल बच्चे के रूप में ही आ गया। हाँ। बिल्कुल घर के मेंबर के रूप में ही आ गया। किनारा करना ऑप्शन नहीं है, सेटल करना ऑप्शन है।
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दिस ईयर। पठान के इस गाने ने पागलपन मचाया, इट स्टेड ऑन नंबर 1 फॉर सो मेनी वीक्स। लेकिन अब नई फिल्मों के आते खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा। दिस वीक इट्स ऑन नंबर 7 फ्रॉम नंबर 4 लास्ट वीक। एंड माय नेम इज सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची डॉट 20। एंड ये जो दो दोस्त है मेरे, केतन जो खुद एक रेडियो जॉकी रह चुका है एंड यशराज मुखाटे, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीस टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता।

I hate it so much that I actually love it. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. इट्स फ्रॉम मिस्टर पंजाबी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िये नी तेरी. इट्स मेकिंग इट्स डेब्यू हियर ऑन नंबर 6 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन. नंबर 6.

0: ग्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
1: बीप। अरे बोल कौन रहा है
2: सर, ये वाला भेज दें बीप।
1: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है ये भेज दें सर बीप।
1: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही रॉन्ग नंबर है।
2: ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
1: अरे बावले हो गए हो क्या
2: सर? एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
1: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
2: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं
1: लास्ट। अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
2: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
1: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
2: सर ये वाला ठीक है बीप।
1: अबे पागल, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
2: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
1: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
2: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
1: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
3: अबे नहीं भेजना तेरे में बुद्धि कम है।
2: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
1: अरे भाई किसको भेज दिया?
2: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
1: अबे ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
8: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
9: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
8: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
10: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
12: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियन ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे, व्हाट डू वी डू?
13: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 Days Pediatrics, दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस नाउ, वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
12: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
13: वी आर ओपन 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
14: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
15: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
14: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
15: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
16: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
17: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
18: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
16: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
19: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
16: The end we've been waiting for. दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd October.
19: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
16: Releasing nationwide by Zee Studios.
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: ये मोह मोह के धागे।
4: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती हैं।
9: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है।
17: ना BBSCA presents Monali Thakur Live, an exquisite evening, a spectacular concert. October 10th, 7:30 p.m. Plainfield High School Auditorium. Tickets on Sulekha and bongobashi.sca.org. Contact 650-305-5624.

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू झूठी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने। एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की हैं, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है, एंड सो इज नुसरत। सो लव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा, एंड तब तू झूठी मैं मक्कार हैपेंड। मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन, एंड द वन थिंग दैट इज रियली अमेजिंग इज द न्यू पेयरिंग ऑफ द टू कपूर्स, रणबीर एंड श्रद्धा। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था। एंड द बेस्ट पार्ट, दे बोथ एक्चुअली लुक गुड टुगेदर। बट दोनों को एक दूसरे के साथ फिल्म करना क्या रास आया, जान लेते हैं।
1: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor, and I've always admired his work. And ये experience करने के लिए on set with him बहुत मजा आया, and he is really superb.
2: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born, because our parents are friendly, and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love.
3: Thank you.
2: I give you credit for this also.
0: I really

0: इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था, इतनी जल्दी इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए। प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट I don't think प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है। एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year-old करियर, और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
1: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है, बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो बुलबुले 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है, एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक। एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन बीट सोनू टीटू का म्यूजिक, बीट भूल भुलैया का म्यूजिक और बीट एनी अदर फिल्म ऑफ माइन, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी। तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में, एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को ये, तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया, विच मीन्स ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। ऑलराइट, सो नाउ द नंबर 1 सॉन्ग मिर्ची टॉप 20 पे वी हैव अ न्यू किंग। जिस गाने ने पिछले हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे, राइडिंग द नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस, तनिष्क बागची की एक और उपज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। Talks about your taste more than mine. Check it out. You're on the Mirchi Top 20. I am Sureen.
2: Number 1.

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: इंटरेस्टिंगली उदित जी ने अपने हिस्से तो फिर गाए हैं, बट अभिजीत दा के पुराने हिस्से रिटेन किए गए हैं। मे बी ना कर दी उन्होंने, मे बी डिडंट केयर। इस हफ्ते का नंबर वन गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन इस शो मिर्ची डॉट 20 का खिलाड़ी अब आपको कहता है बाय बाय। आई बी बैक सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम। मेरे डीएम्स में स्लाइड करने के लिए सुरेन सुरेन ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
7: नहीं बेटे, के लिए जस्टिस चाहिए।
8: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
6: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
6: The end we've been waiting for. Drishyam, the conclusion in cinema 2nd October.
9: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
6: Releasing nationwide by Zee Studios.
10: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
11: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
10: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com or call 917-440-9266.
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
14: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
14: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन। Okay.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: Prefet Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La viva la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Mr. Kumar.
2: Yeah.
3: Hello, sir. How are you?
2: Fine.
3: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
2: नहीं, आप बता
3: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
2: दिस इज रिगार्डिंग व्हाट?
3: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
2: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
3: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
2: हाँ
3: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
2: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइए।
3: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
2: हाँ मिलते हैं।
3: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
2: देखो यार मैं मंडे ट्यूजडे मैं मुंबई जा रहा हूँ, ट्यूजडे आप एक काम करो मिल लो मुझे।
3: मैं ट्यूजडे किसी कितने बजे सर, ट्यूजडे आप मेरे को बताइए।
2: 7 बजे
3: सर, मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
2: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
3: सर संडे कितने बजे?
2: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
3: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो।
2: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
3: पहले अपने ही निकाल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
7: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
6: Wait, they can see us on Sunday?
7: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरामा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट.
6: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
7: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
5: दृश्यम द कंक्लूजन, स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रेया सरन, जयदीप अहलावत एंड मेनी अदर्स.
8: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
5: The end we've been waiting for. Drishyam, the conclusion. In cinema, 2nd October.
8: Because the story has not yet been finished. The last part is still left.
5: Released by Zee Studios nationwide.
9: Wow, this is my dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा.
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है पता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
8: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
9: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
7: Drishyam: The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat, and many others.
10: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है।
7: The end we've been waiting for. Drishyam: The Conclusion in cinema 2nd October.
10: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
7: Released by Zee Studios nationwide.
11: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
12: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: picked up recently. When did she visit Italy? Chopra Saab, so how was Italy?
1: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
0: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
2: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: ये मोह मोह के धागे,
6: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती हैं।
0: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents Monali Thakur Live, एक exquisite evening, a spectacular concert, October 10th, 7:30 PM, Plainfield High School Auditorium. Tickets on Sulekha and mongobashi.sca.org. Contact 650-305-5624.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
7: अब मिर्ची खा।
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: तू भी
2: यस।
1: इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
4: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
5: इट्स हॉट। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
8: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Mirci, burga. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine, fine, fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊँ?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइए।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो 4:30 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे,
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है वो, 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले फिर बताइए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
3: આવે છે ને ખતરનાક ફ્રસ્ટ્રેશન, ઇરિટેશન, ગુસ્સો, જો જોઈતું રિઝલ્ટ ના મળે તો, પોતાનું ધાર્યું ના થાય એટલે આપણે મગજ ગુમાવી બેસીએ, ખબર ના પડે કે કોણે મુક્કો મારી દઉં, કોણા ઉપર બધો ગુસ્સો ઉતારી દઉં, કેટલા ઇરિટેટ થઈ જતા હોઈએ આપણે। એમાં એવું છે ને કે કોઈને પણ પોતાનું જોઈતું રિઝલ્ટ ક્યારે મળતું જ નથી। ભગવાન રામને નહોતું મળ્યું, મહાભારતનું એક પણ કેરેક્ટર એવું નથી, એક પણ પાત્ર એવું નથી કે જેણે જે જોઈતું હોય એ મળી ગયું હોય, એની પ્રાપ્તિ થઈ હોય। તો એ પ્રશ્ન એ છે કે પછી કૃતાર્થ કરવાનું શું, જો જોઈતું થવાનું જ ના હોય તો? આટલું બધું જે ફ્રસ્ટ્રેશન, ઇરિટેશન, ગુસ્સો આ બધી ભાવનાઓ આવે એનું કરવાનું શું? તો કે એક ઉપાય છે, એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું। રામ ભગવાને કેવું વનવાસ એક્સેપ્ટ કર્યું હતું, અર્જુને એક્સેપ્ટ કર્યું હતું કે હવે મારા પ્રિયજનોના સામે જ મારે લડત આપવાની છે। જ્યારે તમે એક્સેપ્ટ કરી લો ને તો આગળના ચેલેન્જીસ તમારા માટે ઇઝી થઈ જાય। રામ ભગવાન જો એક્સેપ્ટ કરે જ નહીં કે ના વનવાસ શું કામ જવાનું, જવું જ નથી મારતો, તો પછી નવી બબાલ થાય। જો એક્સેપ્ટ કરી લો તો શ્રી રામ કહેવાઓ, તમારા ઉપર ચોપડીઓ લખાય। બીજો પ્રશ્ન એ પણ છે કે હવે એક્સેપ્ટ કરવાનું કેવી રીતે, આ તો નવું આવ્યું। તો કે જ્યારે તમારી અંદર એ મેચ્યોરિટી આવી જાય ને કે જે પણ ઘટનાઓ ઘટી રહી છે એના ઉપર આપણો કોઈ કંટ્રોલ છે જ નહીં હકીકતમાં, ત્યારે એક્સેપ્ટન્સ આવી જાય। જોબમાં જોઈતું પ્રમોશન નથી મળ્યું, કંઈ નહીં, એક્સેપ્ટ કરી લો। બ્રેકઅપ થયું છે, એક્સેપ્ટ કરી લો, એ તો ગઈ હવે, એક્સેપ્ટ કરી લો। આજના દિવસમાં તમને એક્સેપ્ટન્સનો પાવર પ્રાપ્ત થાય એવી શુભકામના। યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, હું છું કૃતાર્થ, ઇટ્સ હોટ।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Nine nights, one divine spirit. Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
5: Join daily Garba October 11th to 19th at 7 p.m.
6: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharad Purnima Garba on the 25th.
5: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. दिस अक्टूबर
8: विटनेस द पीक ऑफ एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अ प्रीमियर कम्युनिटी सेलिब्रेशन विद आर्टिस्ट्स लाइक जयश्री, स्पर्श शाह, नीनी आयरिस एंड डांस अकेडमीज लाइक बॉली मूव्स, शिवालिक, तारा आर्ट अकेडमी. एंजॉय फूड, गरबा एंड वन ऑफ अ काइंड फायरवर्क्स ऑन अक्टूबर 3rd एट कैनेडी पार्क, सेयरविल, फ्रॉम 3 टू 9 पीएम. एंट्री एंड पार्किंग इज फ्री.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
11: अब मिर्ची खा.
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
4: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
5: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए।
6: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
4: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
7: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
4: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
7: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
4: Releasing nationwide by Z Studios.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: हेलो
1: हेलो डॉक्टर सविता से बात करा दिए।
0: तो सविता बोल रही हूँ।
1: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
0: क्या परेशानी है?
1: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता।
0: तो वो तो भरता ही है।
1: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
0: अच्छा,
1: ये बुढ़ापे में हो गया। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
0: हाँ हाँ।
1: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
0: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
1: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
0: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
1: नहीं,
0: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
1: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
0: अच्छा।
1: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
0: अच्छा, लेकिन ना, मैं समझ रही हूँ।
1: हाँ, क्या समझ रही
0: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
1: डॉक्टर सविता।
0: हाँ जी,
2: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही देखा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
0: मुर्गा। अब नवीद आप बोलो आज कुकड़ू को।
2: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
0: कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: The mortgage industry has changed over the years, but our honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
9: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: Goes down the ground.
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
1: एक ही होता है।
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
0: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
0: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
2: इट्स हॉट। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: नवरात एकत स्पिरिट
5: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
4: रमो गरबा डेली 11-19 ऑक्टोबर सांजे 7 कलाक थी
5: तारीख 18 ना रोज आठम यज्ञ 19 नौम यज्ञ 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी विजिट gayatricenter.org टुडे
6: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
7: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए।
8: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
6: Drishyam: The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat, and many others.
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है।
6: The end we've been waiting for. Drishyam: The Conclusion in cinema 2nd October.
9: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
6: Released by Zee Studios nationwide.
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
11: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
13: ये मोह मोह के धागे.
14: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है.
15: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है. BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेकुलर कॉन्सर्ट, अक्टूबर 10th 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम. टिकट्स ऑन सुलेखा एंड बोंगोबाशी SCA.org. कॉन्टैक्ट 650-305-5624.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा.
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Nerdy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida fala burga.
1: Nerdy, burga. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता दीजिए।
2: हाँ, तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: दिस इज रिगार्डिंग व्हाट,
2: बस आपके ना आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊँ?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार मैं मंडे ट्यूजडे मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूजडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूजडे किसी कितने बजे सर, ट्यूजडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर, मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे,
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले फिर बताएंगे।
2: पहले अपने ही निकाल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
7: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
8: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
9: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
10: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
8: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat and many others.
11: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
8: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
11: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
8: Released by Zee Studios nationwide.
12: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: Explore our stunning ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: बेटा
9: शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
16: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
9: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
17: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
18: दिस अक्टूबर विटनेस द पीक ऑफ एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अ प्रीमियर कम्युनिटी सेलिब्रेशन विद आर्टिस्ट्स like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris and dance academies like Molly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, Garba and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
19: Listener MA, back-to-back gana sunega. Back-to-back gana sunega. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
7: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग SD कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
6: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
7: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। SD कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
10: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
11: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
12: From the finest kitchens in India, thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियन्स ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
6: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 Days पीडियाट्रिक्स, दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस। नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
5: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
6: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे। द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स, ऑफरिंग सेम डे सिक केयर। वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंड areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: Wow! यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
8: Plus, grooms के लिए royal sherwanis.
7: Miss India, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Hislin.
9: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
10: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
9: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika and it's time for the hottest pop music of the week. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna ho, kisi countdown ki ranking ke bare mein koi sawal, bindaas aake hit me up. Hafte ke top 10 gaano ke countdown mein ek nayi entry hai. Show par hum apna 90s and 2000 ka indie pop classic bajane wale hain. Some special shout outs, all that and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ke countdown ki with Ghana number 10. Sanju Rathod ki awaaz की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे गाना. 16 हफ्ते हो गए इसको काउंटडाउन पर. बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद रोमांटिक बैलेड ऑफ द सीजन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज जी की आवाज में. राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन, दिस वन हैज टेकन इंटरनेट बाय स्टॉर्म. गाने का नाम है दरमिया. मुसाफिर कैफे शो से है ये गाना एंड अपेरेंटली इट्स अ लव सॉन्ग ऑफ द सीजन. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 10.

0: Rana Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
9: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
10: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
9: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
13: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
14: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है.
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची
19: नंबर 7.
20: हाउ चुप

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, हर्ष का म्यूजिक, गाने का नाम है साड़ी सुन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। उससे पहले एक नई नवेली एंट्री, KDS 54 एंड रॉन का गाना फीचरिंग श्रेया घोषाल, गाने का नाम है कल्याणी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 8।
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इन टॉप 10 गानों के बाहर इंडिपेंडेंट म्यूजिक की दुनिया इतनी डाइवर्स, इतनी वास्ट है, ऐसे इतने आर्टिस्ट, इतने गाने हैं जो शायद अभी तक आप तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जिस दिन आप इस गाने को सुन लेंगे, यू विल बी लाइक, ये कहां था अभी तक। फरक का तारे ऐसे एक गाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तारे उन गानों में से है जो धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवर किया, इतना पसंद आया दैट हमारे काउंटडाउन में टॉप 10 पर है। बट आई ट्रूली बिलीव दैट वी लिव इन अ टाइम जहां हम जो भी ढूंढना चाहें हमको सब मिल जाता है। इंटरनेट, AI, तो आपको इसके आगे और क्या सर्च करना चाहिए, 10 more things यू शुड नो अबाउट इट, सब कुछ बता देता है। तो इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में हमारी क्यूरियोसिटी इज अ बिगेस्ट करेंसी। क्यूरियोसिटी टेक्स अस टू प्लेसेस, एंड अगर यू आर वन ऑफ दोस क्यूरियस पीपल जिनको नए आर्टिस्ट, नए गाने डिस्कवर करने हैं, वो गाने जो अभी तक आपके एल्गोरिदम के थ्रू आप तक नहीं पहुंचे, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट गाना डिस्कवर। ऑल द न्यू प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट एक साथ क्यूरेटेड फॉर यू, हिंदी के साथ साथ पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, एंड 10 on 10 गारंटी लेके कह सकती हूँ, व्हेन यू लिसन टू दोस सॉन्ग्स यू विल बी लाइक, यार ये गाने अभी तक मुझे किसी ने क्यों नहीं सुनाए। सो फॉर ऑल यू क्यूरियस बेस्टीज, गाना डिस्कवर इज अ प्लेस फॉर यू। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो भी उस प्लेलिस्ट में है। गाने का नाम है तारे, रिटन एंड कंपोज बाय फरक, फरक का ही म्यूजिक। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार तारे इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद कृष्णा धंधन्योलीवाला का गाना बूम शाका, पिछले हफ्ते से एक नई, दो नई, 3 पोजीशन ऊपर जंप मार के बूम शाका इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दोनों गाने बैक टू बैक, फरक का तारे ऑन नंबर 6, बूम शाका ऑन नंबर 5, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बद्दी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 6।

0: लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के पाने को,
0: परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के पाने को, अब कुछ बच

0: टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: This October,
4: witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
5: Sona kharidne ke soch rahe hai? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price bar jaye. Gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
12: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे। टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
0: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन। 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। आई एम स्टिल नॉट बोर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, हरियाणवी पॉप सॉन्ग। आई एम सैट दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram पर जाओ, मेरा handle is @RJKanika. Now September जा रहा है, October आ रहा है, and I'm sure आपने तो notice कर ही लिया that मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने का सबसे पहला signal ना हमको शाम दे देती है। दिन तो वैसे ही निकलता है। Maybe आप college में हो, office में हो, same traffic, same काम, same phone calls. लेकिन जैसे ही शाम होती है ना, हवा बदलने लगती है, रोशनी थोड़ी soft हो जाती है, नई आवाजें, नई तरह की आवाजें, मौसम का मिजाज ही बदल जाता है। एक तरफ हम पूरा दिन रैप कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ we are really excited to start our day. And somehow, यार मुझे पता नहीं क्यों ये शाम का वक्त बड़ा emotional लगता है. Ever since I was a little kid, शाम को खेलने के बाद घर वापस जाना, मतलब sad वाला emotional नहीं, just I am really aware of how I feel in the evenings. So obviously, full feelings वाली playlist भी है मेरे पास for these evenings. And I'm going to play my top pick for you today. गाने का नाम है शाम तन्हा by अग्नि.
2: शाम तन्हा सी लगे।
0: कुछ तो है इस गाने में दैट हर साल ये गाना मुझे और अच्छा लगने लगता है। मोहन कनन ने जिस तरह से इस गाने को गाया है ब्रो, इट्स लाइक कोई रश नहीं है। ही इज नॉट पुशिंग यू टू फील समथिंग, बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील थिंग्स। एट RJ करेंगे इंस्टाग्राम पर, प्लीज आके मुझे बताना कि व्हाट डिड दिस सॉन्ग मेक यू फील। मैं तो इतना कुछ शेयर कर देती हूँ, इतनी वल्नरेबल हो जाती हूँ यहाँ पे, बट कुछ खास है इस गाने में। इट विल टेक यू बैक टू समथिंग, सम मेमोरी और एन इवनिंग दैट यू विल ऑलवेज रिमेम्बर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इट्स फॉर ऑल दोस इवनिंग्स जहाँ पर आपको लगा कि कुछ खास हुआ भी नहीं है, बट स्टिल यू फाइंड दैट स्टिलनेस एंड आप उसे कितनी बार भी जी सकते हो। अग्नि द बैंड का गाना, मोहन कनन एंड अरिजीत की आवाज में। दिस इज शाम तन्हा प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

I actually have no words for how this song makes me feel. What a beautiful composition. That was Shyam Tanha by Agni. At RJ Kanek on Instagram par, please aao, mujhe batao aisa kaun sa gaana hai जिसमें शाम आपका मेन कैरेक्टर है. मैं ऑनेस्टली ये गाना अपने हर दोस्त को रेकमेंड करती हूँ. शाम तन्हा बाय अग्नि इज माय रेकमेंडेशन फॉर यू. यू सेंड मी योर्स. गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चलेगा. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ डबल वैमी बाय बंजारे बिकॉज उनका नया गाना बरसात 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: की टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची पर. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली रियली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है. तभी तो इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी.
1: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी.
1: गाने का नाम है तेरा मेरा प्यार बाय द वन एंड ओनली कुमार सानू. ये गाना 2004 में रिलीज हुआ था एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स अबाउट लव एट फर्स्ट साइट. इसकी मेलोडी में राइट देयर इन द कॉम्पोजिशन वो अर्ली 2000s वाली रोमांटिक एनर्जी है, विच इज वेरी इनोसेंट, थोड़ी फिल्मी बट बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड. आई हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू वन ऑफ आवर लिसनर्स आरुष, जो पुणे से हैं. उन्होंने इतनी बार रिक्वेस्ट किया ये गाना. आरुष, दिस वन इज फॉर यू. अकॉर्डिंग टू आरुष, ही इज लुकिंग फॉर लव एंड थोड़ी मुश्किल आ रही है. वो कहते हैं कि यार डेट पे जाने के लिए, बात करने के लिए तो बहुत लोग हैं, बट वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग नहीं आ रही है. सो ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग एंड गो बैक टू दोज सिंपलर टाइम्स, जब लाइफ सिंपल थी और किसी को पसंद करना एक बहुत बड़ी डील होती थी. किसी के फोन के लिए वो पूरा दिन वेट करते थे, उनका नाम स्क्रीन पे देखकर बिना रीजन स्माइल करते थे, फिर रात को सोने से पहले वो सारी कॉन्वर्सेशंस अपने दिमाग में रिप्ले करते थे. आरुष ने मुझे वो नाम बताया, मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट आई ट्रूली फील यू आरुष. दिस सॉन्ग इज लाइक अ टिकट टू सिंपलर टाइम्स, जहाँ बस कॉलेज कैंपस से बस स्टॉप तक जाना, साथ में चलना ही डेट लगती थी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. रियल लाइफ में आई माइट नॉट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, बट इस गाने में इट वर्क्स आउट. कुमार सानू की आवाज में दिस इज तेरा मेरा प्यार ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

पहला प्यार, पहली नजर वाला कुमार सानू की आवाज, ये इतना इमेजिनेटिव है। आई थिंक फर्स्ट लव का जो मेगा मैजिक है वो इसी में है, दैट उस वक्त किसी को पता ही नहीं है दैट ये मेमोरी आपकी जिंदगी की इतनी बड़ी मेमोरी बन जाएगी। कुमार सानू की आवाज में दैट वाज तेरा मेरा प्यार ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर। आओ 90s एंड 2000s के वो गाने जो आपको आज आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से सिंपल टाइम्स में ले जाते हैं, हमारे साथ आके शेयर करो। मैं और अश्काय माई प्रोड्यूसर, हम दोनों आपके रिकमेंडेशंस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नाउ बैक द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर मी टू टेक यू टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। बादशाह हितेन शर्वी यादव का गाना, गाने का नाम है बैंगर। 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक बैंगर इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद मिट्टा रोर का शीशा, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले 4 हफ्तों से ये गाना नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है, दिस वीक ऑल्सो ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, बैंगर ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

barrel. Yeah. भाई तेरा बस लिख तगाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए, जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
4: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
5: Nine nights, one divine spirit.
6: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
5: Join daily Garva, October 11th to 19th at 7 PM.
6: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th, and Sharat Purnima Garba on the 25th.
5: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in...
3: हिट गाना सुनना आसान है, ये समझना मुश्किल है कि वो हिट आखिर क्यों हुआ। और वही तो हम करते हैं हर हफ्ते के वो 20 गाने जो सबकी जुबान पर है। लेकिन मैं सिर्फ उनका काउंटडाउन नहीं करता, मैं उनके पीछे की कहानी ढूंढता हूँ। किस आवाज ने गाने को पहचान दी, किस कैरेक्टर ने उसे यादगार बना दिया, और कैसे एक गाना फिल्म से निकल कर हमारी जिंदगी में उतर गया। Hey, this is the Mirchi Top 20. मैं हूँ सुरेन, गाने आपके, कहानियां मेरी, and we kickstart the countdown with गाना नंबर 20, ऊंचा लंबा कद, the rehashed version from Welcome to the Jungle.
4: Number 20.

0: फुल ऑन मसाला, फुल ऑन मैडनेस, चाहे 2007 हो या 2026। लेकिन बॉलीवुड पिछले 10-15 साल में एक अजीब फेज से गुजरा है। कभी स्केल, कभी VFX, कभी स्पेक्टिकल, जैसे फिल्म को यादगार बनाने के लिए सब कुछ बड़ा होना जरूरी था। लेकिन अब शायद फिल्म मेकर्स को समझ आ रहा है, फिल्म बड़ी नहीं, कहानी और कैरेक्टर्स अनफॉरगेटेबल होने चाहिए। रणवीर का एनिमल, रणवीर का धुरंधर, और फिर एक ऐसे एक्टर जिनके कैरेक्टर्स ने ये काम सालों पहले ही कर दिया था। द नेम इज अजय देवगन, चाहे वो ओमकारा बने।
1: अरे
0: या फिर बाजीराव सिंघम, दीज आर अजय देवगन्स टू मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स। लेकिन मेरे लिए पर्सनली विजय साळगांवकर ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। दृश्यम ने दिखा दिया कि ऑडियंस को सीट से बांधे रखने के लिए VFX, एक्सप्लोजन्स इनकी जरूरत नहीं है। एक आदमी, एक सीक्रेट और एक किलर कैट एंड माउस गेम ही काफी है। और आयरनी देखिए, दृश्यम की फिल्में अपने म्यूजिक के लिए कभी याद नहीं की गई। एंड बिफोर आई गेट टू दृश्यम, ये बता दूं कि नंबर 19 पर अजय सर का एक और अवतार हमने देखा था इन धमाल 4। उसका गाना साड़ी हैपेंस टू बी गाना नंबर 19। लेकिन गाना नंबर 18, वेल दृश्यम की दुनिया, वहीं से पहला गाना निकल कर आ रहा है। दिस इज विंगंसा, सिद्धार्थ बसरूर की आवाज में, रवि बसरूर का म्यूजिक, आमिर खान के शब्द, फ्रॉम दृश्यम द कंक्लूजन
2: नंबर 18।
3: दृश्यों के बाहर नजरों को डाल, संभल कर चलना और खुद को

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो डॉक्टर सविता से बात करा दिए
1: तो सविता बोल रही हूँ
2: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं उम्र से ये अब आ नहीं सकता तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता
1: है। तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा,
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी,
1: हाँ हाँ,
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
2: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा,
2: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, कभी लेकिन नहाने को। मैं समझ रही हूँ।
2: हाँ, क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
2: डॉक्टर सविता?
1: हाँ जी,
3: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही देखा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
1: अब नवीद आप बोलो आज कुकड़ू को।
3: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
11: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 ओकरी रोड इजलिन।
12: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
13: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेकुलर कॉन्सर्ट, अक्टूबर 10th 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड मोंगोबाशी SCA.org। कॉन्टैक्ट 6503055624।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
17: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
16: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
18: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
19: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
19: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
19: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
20: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
21: नंबर 16.

शरारत इन द वॉइसेस ऑफ जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची, एकदम अनअपोलोजेटिक बॉलीवुड मैडनेस। और शायद इसलिए ये गाना याद रह जाता है, लेकिन एक गाना काउंटडाउन से बाहर हो चुका है, इसका एग्जिट मुझे जेन्युइनली सरप्राइज करता है। तो फिर आओ ना, आवारापन 2 के 3 गाने अभी भी चार्ट्स में हैं, लेकिन आवारापन की ओरिजिनल फिल्म का ये गाना तो फिर आओ अब इस काउंटडाउन पे नहीं है। एंड मुझे लगता है इसका एक रीजन है, कभी कभी किसी गाने को अच्छा सिंगर नहीं सही आवाज चाहिए होती है, उसमें एक खास मैस्कुलिन वजन की जरूरत थी, एक ऐसी आवाज जो हार्ट ब्रेक को फील भी करे और कैरी भी करे। Somehow I always thought के यार ये गाना एक सिंगर की आवाज में बहुत अच्छा लगता, and that singer is Fahim Abdullah। अगर कोई इस गाने को वो पुरानी रूह, वो डार्कनेस और वो अच्छी पकड़ दे सकता था, then in my eyes I thought it could have been Fahim। और फिर फहीम ने अपने सोशल मीडिया पर इसका एक कवर गा के डाल दिया।

0: बस दर्द वही है, लेकिन आवाज का वजन बदल गया और गाना भी। और शायद इसलिए आवारापन 2 का म्यूजिक इतना इंटरेस्टिंग है। ये पुरानी फिल्म को रिपीट नहीं कर रहा है, ये अपनी आवाज ढूंढ रहा है। लेकिन जिन्होंने तो फिर आओ गाया है इन आवारापन 2, उनका डेब्यू सॉन्ग हैपेंस टू बी वे जुनून, कंपोज बाय दिस जीनियस कॉल्ड मिथुन और लिखा है सईद कादरी साहब ने। दिस वन इज अ नंबर 15 फ्रॉम आवारापन 2।
1: नंबर 15।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
4: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
3: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट.
7: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
8: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
6: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर.
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
6: The end we've been waiting for. Drishyam, the conclusion in cinema 2nd October.
9: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai.

0: आखिरी हिस्सा बाकी है।
1: रिलीजिंग नेशन वाइड बाई जी स्टूडियोज।
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती। वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.
13: Only on Mirchi. It's hot. Number 14.

0: सांसों की माला पे, मिर्जापुर की पूरी एल्बम में मेरा सबसे फेवरेट गाना। एंड इसकी कहानी बहुत पुरानी है, मीराबाई और कृष्ण जी के बीच जो एक समर्पण की लोक कथा है, ये कॉम्पोजिशन उस एहसास से जुड़ा हुआ है। और ये मास्टरपीस तुफैल होशियारपुरी नाम के कवि को एट्रिब्यूटेड है। लेकिन जिस आवाज ने इस कॉम्पोजिशन को पूरी दुनिया की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बना दिया, वो आवाज थी उस्ताद नुसरत फतेह अली खां की। और नुसरत साहब को याद करते वक्त एक डिस्टिंक्शन करना जरूरी है, उनकी कला को सल्यूट करना किसी मुल्क की सियासत को सर्टिफिकेट देना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक महान आर्टिस्ट का हिसाब चुका रहे हैं, उस इन्फ्लुएंस का जो उन्होंने हिंदी फिल्म म्यूजिक पर छोड़ा। थिंक ऑफ ऑल द सॉन्ग्स, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा सोनिया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, निट खैर मंगा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मेरे रश के कमर, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, मेरा पिया घर आया। यार कुछ रिक्रिएट हुए, कुछ की ट्यून्स को नए लिरिक्स, नए सिचुएशंस और नए नाम मिले, कुछ तो चुराए भी गए, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना गहरा था कि नुसरत साहब की मेलोडिक वोकैबुलरी हिंदी फिल्म म्यूजिक का हिस्सा बन गई। और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है एआर रहमान का एक गाना, जो उन्होंने नुसरत साहब के एक बहुत ही मशहूर गाने सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना से प्रेरित होकर मणि रत्नम की फिल्म गुरु के लिए एक कॉम्पोजिशन बनाई थी। और वो गाना था तेरे बिना, रिटन बाय गुलजार साहब, संग बाय एआर रहमान हिमसेल्फ। दिस हैपेंस टू बी माय पिक ऑफ द वीक।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: तमन्ना भाटिया, वी हैव अ प्रॉब्लम। एंड पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे तमन्ना भाटिया के डांस नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये गाना स्त्री का बहुत ज्यादा पसंद है।
1: आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए।
0: एंड देन बैड्स ऑफ बॉलीवुड में ये वाला गाना तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इसके अलावा भी देयर क्वाइट अ फ्यू डांस नंबर्स। एक और याद आ रहा है यार, रेड 2 में गाना आया था नशा करके, एंड तमन्ना इन गानों में कमाल करती है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इनफैक्ट अगर आप बॉलीवुड के बेस्ट डांस नंबर्स की बात करोगे तो तमन्ना का नाम डेफिनेटली टॉप 3 स्पॉट्स में होगा। प्रॉब्लम गानों से नहीं है, प्रॉब्लम इमेज से है, क्योंकि तमन्ना साइंड अप फॉर दिस अपकमिंग फिल्म कॉल्ड वन अलॉन्ग विद सिद्धार्थ मल्होत्रा, जहाँ पे तमन्ना का एक प्रॉपर एक्टिंग रोल है। लेकिन उसका एक गाना आया है कॉल्ड ठुमक ठुमक, एंड वहां पर भी तमन्ना भाटिया इज डूइंग द सेम थिंग्स दैट शी डिड इन दी सॉन्ग्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड। वही ग्लैमर, वही अदाएं, वही सेंसुअलिटी, वही स्क्रीन परसोना। देखो, अगर तमन्ना सच में चाहती थी कि ऑडियंस उनको एक पर्टिकुलर इमेज में ना देखे, तो फिर उनको उस इमेज से जुड़ी कई चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए था। एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, इमेज इंडस्ट्री बनाती है, लेकिन उस इमेज को तोड़ने का फैसला एक एक्टर को करना पड़ता है। आप एक फिल्म में कैरेक्टर बनकर आओ और अगले ही मिनट ऑडियंस को वही पुरानी तमन्ना दिखा दो जिसे वो डांस नंबर्स में देखने की आदत डाल चुके हैं, तो फिर ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी, वो बस वही देखेगी जो आप उसे बार बार दिखाते आए हैं। और यही बॉलीवुड का सबसे बड़ा ट्रैप है। पहले वो आपकी एक इमेज बनाता है, फिर उस इमेज को वो हिट बनाता है, और जब आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हो तो वही इमेज आपको वापस खींच लेती है। लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी भी होती हैं जिनसे एक्टर को नहीं पूरी जेनरेशन को कम्पीट करना पड़ता है। श्रीराम की छवि भी उन्हीं में से एक है। पिछले हफ्ते जिस भक्ति की प्रार्थना ने हमें पहली बार दर्शन दिए थे, इस हफ्ते वो नंबर 11 पर है। ये है जय जय राम रामायण,
2: नंबर 11।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे. ओनली एट RK ज्वेल्स. RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इन टू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
12: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट.
13: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
14: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
12: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर.
15: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
12: The end we've been waiting for. Drishyam, the conclusion in cinemas 2nd October.
15: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
12: Releasing nationwide by Zee Studios.
16: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ.
17: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ.
18: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ.
11: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ. ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ. ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1. ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1.
19: This hour is brought to you by Raj Jewels.
20: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
21: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
20: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
22: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
20: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है.
20: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: ये आवारापन, अरिजीत की आवाज अभी भी उस पुराने आवारापन का दर्द जिंदा रखती है। लेकिन जिस बॉलीवुड में सूरज बरजातिया ने 1989 में एंट्री ली थी यार, वो बॉलीवुड तो आज बिल्कुल अलग है। कैन यू बिलीव इट, 37 साल हो गए हैं लेकिन सिर्फ 10 फिल्म्स डायरेक्ट की हैं सूरज जी ने। फिर भी सूरज जी ने एक ऐसी दुनिया बना दी जो आज के बॉलीवुड में ऑलमोस्ट एलियन लगती है। यहाँ फैमिली में लोग एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात नहीं करते, एक दूसरे को आप कहते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, लेकिन कोई विलन नहीं होता। अपनी खुशी से पहले फैमिली की खुशी आती है और बदला लेने से ज्यादा सैक्रिफाइस की वैल्यू होती है। सूरज बरजातिया ने इंडिया को आइडियलाइज नहीं किया, उन्होंने एक आइडियल इंडिया इन्वेंट किया। और सवाल ये है, इतना बदल चुके बॉलीवुड में क्या इस दुनिया के लिए अभी भी जगह है? इसका जवाब हमें मिला सूरज बरजातिया से।
1: Somewhere I feel complete now, even after so many years, people come here like this to see my cinema. My daughter is there, my son-in-law is there with the family, my sons are there, their in-laws are there, I have two granddaughters at home. So somewhere up, main kuch dena chahta hoon. Honestly, this is one of the most progressive films of mine, keeping my values intact. And director wohi hota hai jo kuch kehna chahta hai. So I just want to convey in this film how the generations can stay together. Of course, main kahin phansta hoon har film mein because main goodness mein aur goodness karna chahta hoon. To wo mere apne issues hai, but this is one of my most progressive and favorite films.
0: Generations ko saath rakhna aur apni values ko compromise kiye bina unhe aaj ke cinema mein lekar aana. Shayad Suraj ji ki sabse progressive baat yahi hai ki unhone waqt ke saath apni values badalne se inkaar kar diya. Aur ab isi duniya mein melody lekar aa rahe hain Bollywood ke ultimate hit machine, the man who collaborated with Suraj Barjatya on Prem Ratan Dhan Payo, Himesh Reshamya. नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है ऑफ द टाइटल सॉन्ग ये प्रेम मोल लिया, संग बाय निहाल टोरो एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया श्रेया घोषाल। नंबर 9।

0: we be frontin' on the lines. Relax, honey. Get it?
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Mr. Kumar.
3: Yeah.
4: Hello, sir. How are you?
3: Fine, fine, fine.
4: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
3: नहीं नहीं नहीं, आप बता
4: दीजिए। तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
3: दिस इज रिगार्डिंग व्हाट,
4: बस आपका ना आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
3: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
4: सैटरडे 4 बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
3: हाँ हाँ
4: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को।
3: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
4: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
3: हाँ मिलते हैं।
4: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
3: देखो यार मैं मंडे ट्यूजडे मैं मुंबई जा रहा हूँ, ट्यूसडे आप एक काम करो मिल लो मुझे।
4: मैं ट्यूसडे किसी कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
3: 7 बजे
4: सर, मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
3: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
4: सर संडे कितने बजे,
3: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
4: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
3: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले फिर बताइए।
4: मैं पहले अपना ही निकाल लूं।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एवे, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
15: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस, अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
16: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155.
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: Tera kya hoga kalya?
10: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
19: Ab
7: मिर्ची खा.
20: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
21: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट. नंबर 7.

तवाही नाम का गाना खत्म जरूर हुआ है, लेकिन असली तवाही तो सलमान खान ने मचाई हुई है। भाई ने बिग बॉस पर उन ट्रोल्स और उन जर्नलिस्ट को सीधा निशाने पे ले लिया जिन्होंने क्रिटिसिज्म और कैरेक्टर असैसिनेशन के बीच की लाइन ही मिटा दी थी। फिल्म बुरी है तो बोलो, एक्टिंग खराब है फिर भी बोलो, अगर वजन मेरा बढ़ गया है उस पर भी बोलो, लेकिन पर्सनल होने का लाइसेंस वो किसी को नहीं मिला है। और फिर सलमान खान ने उन जर्नलिस्ट को भी कॉल आउट किया जो एक्ट्रेसेस की तस्वीरें खींचकर उनके बॉडी पार्ट्स को जूम करके सोशल मीडिया पर बेचते हैं। उसे जर्नलिज्म कहना जर्नलिज्म की इंसल्ट होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं है, दैट इज चीप वॉयरिज्म। और जर्नलिस्ट या पत्रकार नाम का शील्ड पहन लेने से वो रिस्पेक्टेबल नहीं हो जाता। और मुझे सबसे ज्यादा मजा एक आयरनी में आता है, बॉलीवुड में लाइन क्रॉस करना सलमान खान से बेहतर कोई नहीं जानता है, लेकिन इस बार भाई ने लाइन क्रॉस नहीं की, एक आयरनी में आता है, बॉलीवुड में लाइन क्रॉस करना सलमान खान से बेहतर कोई नहीं जानता है, लेकिन इस बार भाई ने लाइन क्रॉस नहीं की।

12, आज उसी भाई के नाम, सलमान खान के नाम, मेरा रीवाइंड ट्रैक। वो बात जो जर्नलिस्ट एंड ट्रोल्स की क्लास लगाने के बाद वो बिंदास बोल सकते हैं। बॉलीवुड, मैं हूँ हीरो तेरा। टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: ये मोह मोह के धागे।
4: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
5: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents Monali Thakur Live, एक exquisite evening, a spectacular concert, October 10th, 7:30 PM, Plainfield High School Auditorium. Tickets on Sulekha and mongobashi.sca.org. Contact 650-305-5624.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
10: Number 5.

0: अमित त्रिवेदी का ये गाना बिना किसी एफर्ट के मूड हल्का कर देता है। लेकिन रोमांस की दुनिया में एक इंटरेस्टिंग चेंज जरूर आया है। पहले रोमांटिक गाने आते थे और उसके साथ में लव स्टोरी भी मिल जाती थी। प्राइम एग्जाम्पल फॉर एवर विल बी दिस सॉन्ग।
1: हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना।
0: फिर हमें रणबीर और दीपिका दिखे। सिर्फ पिछले साल हमें एक लव एंथम भी मिला।

0: आज जब इन गानों को सुनते हो तो एक कहानी सामने आ जाती है, लेकिन आजकल कुछ गाने ऐसे हैं जो आपको कहानी देते ही नहीं, इनफैक्ट आपको जगह देते हैं अपनी कहानी बनाने की। वारू फॉरएवर ये परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि 2018 में जब मिर्जापुर आई थी ये गाना उसी टाइम पे हमने पहली बार सुना था, लेकिन ये गाना अब सीरीज से बाहर निकल गया है। कपल वीडियोस, हार्टब्रेक एडिट्स, वेडिंग मोंटाजेस, अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी यादें। मिर्जापुर ने सिर्फ गाना दिया था, इंटरनेट ने उसका रोमांस लिख दिया। और शायद आज रोमांटिक गानों की डेफिनेशन भी बदल रही है। पहले गाना आपको लव स्टोरी दिखाता था, आज गाना आपको अपनी लव स्टोरी दिखाने की जगह देता है, क्योंकि एवरीवन इज द डायरेक्टर ऑफ देयर ओन लव स्टोरी। और अपनी कहानी में सब शाहरुख खान है। और वही गाना रोमियो श्रेया घोषाल की आवाज में मिर्जापुर द मूवी में एक नई जिंदगी लेकर आ रहा है। ऑन नंबर 3, प्रोबेबली द फास्टेस्ट क्लाइमर ऑफ द मिर्ची टॉप 20, ये है वारू फॉरएवर।
1: नंबर 3
2: पर

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: तू भी
2: आस। भाई
1: दोनों इधर। हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: नवरात एकत स्पिरिट।
10: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
9: रमो गरबा डेली 11-19 अक्टूबर सांची 7 कलाक थी।
10: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट गायत्री सेंटर .org टुडे।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Inefficient, very complex,
14: clumsy or
15: confusion ही confusion.
16: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
17: This hour is brought to you by Raj Jewels.
18: Listener MA, back to back gana sunega.
19: Back to back gana sunega.
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
7: Number 2.

गहरा हुआ सुनते ही वो बर्फीली पहाड़ियां, रणवीर सिंह, सारा अर्जुन एक बाइक पे बैठे हुए, वो सारे विजुअल जहन में आ जाते हैं। और शायद ग्रेट फिल्म सॉन्ग्स की एक खूबसूरत क्वालिटी यही होती है कि आवाज, गाना और चेहरा एक ही याद बन जाती है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे भी हैं जहां गाना याद रह गया लेकिन चेहरा बिल्कुल नहीं याद आता। और कभी कभी इसका रीजन सिंपल है, कास्टिंग इज ऑल रॉन्ग, गलत है।

ये गाना आई एम श्योर कि आपकी प्लेलिस्ट में आज भी मौजूद है। इस गाने का नाम है मौला मेरे मौला फ्रॉम द फिल्म अनवर और इसे बनाया था मिथुन ने। गाना आज भी जिंदा है, लेकिन ऑनेस्टली एक सवाल का जवाब बताओ, क्या आपको इसके हीरो याद है? नहीं ना, लेट मी टेल यू द नेक्स्ट सॉन्ग।

अरे खूबसूरत गाना साइबो फ्रॉम शोर इन द सिटी, एंड ये गाना कितने लोगों को याद है, लेकिन फिल्म कितने लोगों को याद है? फेसेस तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऑडियंस कभी कभी गाने को एक्टर से आजाद कर देती है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी होता है जब कास्टिंग इतनी परफेक्ट होती है कि गाना सुनते ही एक्टर की आंखों में वही इमोशन दिखने लगता है जो सिंगर की आवाज में हम सुनते हैं। शायद इसलिए आज का जो नंबर वन गाना है वो नंबर वन पे है, क्योंकि जब जब आपके कानों में तेरा मेरा रिश्ता नाम की आवाज गूंजेगी, इमरान हाशमी का चेहरा आपकी नजरों के सामने होगा, पूरे हार्ट ब्रेक के साथ, उस दर्द के साथ। बिल्कुल उसी इंसान के लिए बना हुआ ये गाना। इट इज नंबर वन वंस अगेन अनडिस्प्यूटेड ऑन द मिर्ची टॉप 20। तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज नंबर वन।

0: हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत किसी रिश्ते को बनाता है वक्त। अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त इस शो पे अभी खत्म हो गया है, एंड दैट ब्रिंग्स अ क्लोज टू दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20। ये वादा है कि मैं आपको फिर मिलूंगा यही ऑन द मिर्ची टॉप 20, 20 गानों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। अंटिल देन, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।